0: frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.
1: Mujhe kuch kehna hai,
2: mujhe bhi kuch kehna hai,
1: mujhe kuch kehna hai,
2: mujhe bhi kuch kehna hai.
1: Pehle tum,
2: pehle tum,
1: pehle tum,
2: pehle tum,
1: pehle tum,
2: tum,
1: tum,
2: tum,
1: tum,
2: tum,
1: tum, tum.
2: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ।